इतना अनमोल खजाना गुरु नानक ने साड़ी झोली विच पाया, सानू इस अनमोल खजाने दी पहचान हो जावे। वाहिगुरु मेर करे इस अनमोल खजाने तो असी लाभ ले सकीए। साध संगत जी, जपजी साहब दी इतनी महानता है, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जदों गुरु अंगद देव जी दे हिरदे दे विच अपनी जोत टिकाई है, अपना रूप बख्शिया है, एक बारी प्यार ना लाखो सतनाम। सतसंग जी, जदों गुरु नानक साहब ने गुरु अंगद देव जी दे हिरदे विच जोत टिकाई, अपना रूप बख्शिया,

तू बहुत सियाना है, बड़ा समझदार होगा, फिर भी तू उन्हां नूं पुछ लै, काहू खरे सुजान वंजा एनी कपड़ी, जेड़े इन्हां पानियां चो लंघे होए ने किसे नवे पतन ते आ जावे, किसे नवे नदी दरिया ते पहुंच जावे, उथों लंघण दा मसला पैदा हो जावे ना, तू भावे किड्डा वड्डा तारू है फिर भी तू उन्हां नूं पुछ लै जेड़े इस राह तों लंघे, पता नहीं किथे भंवर होवे, किथे पानी दी की दशा होवे, इस राह विचों लंघण वास्ते चंगा रवे जे तू किसे तारू नूं जिहड़ा इथों लंघिया होवे उहनूं पुछ लवे इथों तूं किवें लंघिया सी, की हालत है। इसे तरह धर्म के मार्ग से बंदा किन्ना होशियार ते चलाक, धर्म के मार्ग से उन्हां लोकां दे नाले गल कर लैणी, लालन रावया कवन गती री, तू किस तरह पति नाल प्यार कीता है, तू प्रभु नाल किस तरह प्यार पाया, प्रभु नाल तेरी सांझ किवें पक्की होई है, तू प्रभु नूं किवें पाया, सखी बतावो मुझे मतीरी, मैनू भी कोई मत दे, चाहे पुछो सुहागणी तुसी रावया किन्नी गुणी, जिन्हां सुहागणा ने घर स्वर्ग बना रखे, जिन्हां दे घर दे विचों खुशियां ते खेड़िया की खुशबू उठती है, उन्हां नूं पुछ लेना चाहीदा है ये खुशबू तुहानूं किवें प्राप्त होई, इस घर नूं स्वर्ग तुसां किवें बनाया, चाहे पुछो सुहागणी तुसी रावया किन्नी गुणी, ते जिन्हां घरां चो कलेश उठदा होवे जिथे प्यार की कोई सांझ ना होवे उन्हां नाल गल करन दी भी की लोड़ है, मत उन्हां नूं कोई मत ऐसी मन च आ जाए, उन्हां दे कोलों कोई ऐसा रंग चढ़ जाए कि अपना भी जीवन खराब कर लईए, उन्हां दे नेड़े होइए जिन्हां दे जीवन च सुख नजर आउंदा, जिन्हां दे जीवन च आनंद नजर आउंदा, चाहे पुछो सुहागणी तुसी रावया किन्नी गुणी, वो जेड़े संत भगत परवान जो प्रभु आया, सही विचखण जंत जिनी हर ध्याया, जिन्हां दे बारे सुखमणी साहिब पढ़ने जो जाने ते सदा सुख होए, आप मिलाए रहे प्रभ सोए, ओ धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत, धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया, जो आप चल सकदा धर्म दे मार्ग ते किसे होर नूं तोरन दी समर्था रखदा है, इहो जिहे बंदे नूं लभ के उहदे नाल मित्रता पाई सोभा लाहेवंदी रहिंदी, ते जिस दिन कोई मिल पैंदा है धन गुरु नानक दा सवारिया है भाई मन सुख, जिस दिन महाराज शिवनाभ नूं मिले सी वो वर्तां पूजा कर्मां बेंत तरह दीआं रस्मां च फसिया है बंदा, जिस ने भाई मन सुख दे दर्शन कीते हैरान हो गया, ए तां कोई वर्त नहीं रखता, ए तां कोई पूजा नहीं पिया करता, ए तां कोई पखंड नहीं पिया करता, ए तां कोई रचना नहीं रची बैठा, मेरे सारे राज विच मेरे हुक्म अनुसार धर्म कर्म पिया चलता है, तो यह बंदा उस तो बागी होके ए नेत्रां च मस्ती है किस तरह हो सकती, उन्हूं कहिंदा सजना ए नेत्रां दी मस्ती, ए बोलां दी मिठास, ए जीवन दे विच हुलारा ते आनंद तैनूं कित्थों मिले, ते भाई मनसो कहिंदे ने गुरु नानक दी मत लै के गुरु कोलों समत लै के गुरु कोलों जज सेख के जीवन का यह आनंद अपने आप आए, चरणा ते पै गया, कहन लगा सजना मैनू भी दस फिर यह आनंद मैनू किवें आ, भाई मन सुख फिर अपनी पूजा कराउण नहीं बह गए राह दस दिता, कहन लगे प्यार उहदे नाल कीता सी उहने बांह फड़ के अपने बना लिया, प्यार उहदे नाल कर ते तैनू भी बांह फड़ के अपना बना लेगा, कहिंदा मैं लब्भा कित्थों प्यार किवें करा, भाई मन सुख हस पै कहन लगे महाराज शिवनाभ जे प्यार करके प्यारे नूं लभना पै फिर कहदा प्यार कीता, तू प्यार करके प्यारा आपे खिचिया तुरिया, प्यार विच इनी खिच पैदा कर वो आपे तैनू लभदा फिरे, तू उन्हू लभन ना जावे बल्कि तैनू वो लभदा फिर, ऐसी चिंग ला दिती ऐसी रचना रच दी उस राजे दे अंदर, धन गुरु नानक खिचे चले गए, राजे शिवनाभ दे प्यार ने गुरु नानक साहब नू सगला दीप खिच लिया, कि जे वो प्यार करना सानू भी आ जाए या इहो जिहा प्यार करना

कि जिदी मैं अरदास कर रहे हैं एदी कमाई नेक ने। अगर वह अरदास करता है तो साहब जी कहते ने वह फिर दलाल है तो उहदे भी हथ वढे जाणगे क्योंकि उसने इंसाफ नहीं किया। रब की दरगाह विच सच ते नबेड़े ने।

कहन लगा मेरे कार बच्चे ने जन्म लिया, ब्राह्मणा ने प्रसादा नहीं छके, कहंदे ने तेरा कार सोतक वाला। ए दुखी बैठा सी, किसी ने कहा दुखी ना हो, इथे धन गुरु नानक साहब आए ने, ओ सोतक पातक नहीं मन दे। इथे एक गल याद रखना, जिथे कोई जन्म लवे उथे कहा जांदा है सूतक, जिथे कोई मरे उथे कहा जांदा है पातक। इस प्रेमी ने कहा तू दुखी ना हो, गुरु नानक साहब दे कोल जा, ओ सूतक पातक नहीं मनदे, इन्हां परमा वहमां विच नहीं पैंदे। ए प्रेमी धन गुरु नानक साहब दे कोल आया ते बेनती कीती, महाराज मेरे घर बच्चे ने जन्म लिया पर ब्राह्मणा ने भोजन नहीं छके, कहंदे ने तेरा घर झूठा सूतकाल। धन गुरु नानक साहब ने अपने सिखा नूं प्यारियां नूं भेजिया, जाओ तुसी प्रशादा छके आ। सिखा ने प्रशादा छकिया, उन्हां ब्राह्मणा नूं पता लगा ता उन्हां नूं इस गल दा मन विच बड़ा रोस जा गया। ए सारे ब्राह्मण इकट्ठे होके धन गुरु नानक साहब दे कोल आए और गुस्से नाल कहन लगे, महाराज तुसी धर्म ते नहीं चलदे, तुसां धर्म दे उल्ट काम कीता।

गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं, देहो राम मसीत सोई, पूजा ओ निवाज ओही। देहोरा और मसीत, पूजा अते निवाज, इन्हां नूं एक ही समझो, क्योंकि जेड़े इन्हां विच फर्क समझदे नहीं उन्हां दे मना विच ही नफरत रहिंदी। सदियां तों हिंदू मुसलमान इस मसले ते लड़दे झगड़दे आए, फर्क समझ के। कुछ लोग कहंदे ने कि सिख धर्म वक्खवादी है, पर सिख धर्म वक्खवादी नहीं, ये सिख धर्म का ही उपदेश है। धर्म के नां ते लड़न वालेओ सुनो, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तुहानू की उपदेश करदे ने। ना मंदिर विच फर्क समझो, ना मसीत विच

जश, गंधर्व, तुरक, हिंदू नाम वक् हन, पहरावे भी वक्, देश भी वक्, और इन्हां चीजां दा असर इंसान ते हुंदा है। पर सतगुरु जी कहंदे ने अगर आपां मन विच विचार करिए ते सानू किसे विच फर्क नजर नहीं आवेगा। क्यों नहीं आवेगा?

अल्लाह अपेक्ष होई कुरान ओ कुरान ओही हिंदू कुरान पढ़द मुसलमान कुरान पढ़द मुसलमान अल्लाह नु याद करद हिंदू राम नु याद करद ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कह रहे ने अल्लाह दा नाम लैण वाले है कुरान शरीफ पढ़न वाले है मुसलमान नु ए उपदेश हिंदू नु की उपदेश ऐ पुराण पढ़न वाले हिंदू ऐ राम नु याद करन वाले हिंदू अपने मन विच ए विचार कर एक बंदा मसीत विच बह के निवाज पढ़ता है वो अपने अल्लाह नु याद करता है एक ब्राह्मण मंदिर विच बह के पूजा करता है वो अपने परमेश्वर नु याद करता है टंग दोनों दे अलग ने एक निवाज पढ़ता है एक पूजा करता है पर ए सोचिए दोनों दा मकसद की है मुसलमान अल्लाह नु याद कर रहे है हिंदू अपने राम नु प्या याद करता है मकसद दोनों दा

गंगा, बनारस हिंदुओं वास्ते पूजनीक ने, मक्का काबा मुसलमाना वास्ते। मक्का काबा मुसलमान पूजते ने, गंगा और बनारस हिंदू पूजते ने, अगे भाई साहब की कहते हैं।

राम रहीम कहाईंदे। एक नाम हिंदू राम कहंदा है, मुसलमान रहीम कहंदा है। राम रहीम कहाईंदे एक नाम, परमेश्वर एक है, उदे नाम कई। हिंदू राम कह रहे हैं, मुसलमान

मान पूजते। भाई साहब जी कह रहे ने वेदा और कतेबा का उपदेश भुला दिता है और दुनिया जिहड़ी है देखो लालच विच फस के शैताना दे राह ते चल पई है। शैताना दा राह नफरत ईर्ष्या दुबदा और झगड़े।

इस पौड़ी दे विच भाई गुरुदास जी ने इस्लाम धर्म दा जो असूल है उहदे बारे दस्या कि मुसलमान वास्ते रोजे ईद निवाज जरूरी इन्हां दे पीर पैगंबरां दा यह उपदेश। पर जिस वेले मुगलां दा राज होया हिंदुस्तान ते तां औरंगजेब जिहड़ा कि एक जालम बादशाह सी उसने यह हुक्म कीता सी कि हिंदुस्तान विच हिंदू धर्म नहीं रहन देना, तां पंडित कृपा राम ने आनंदपुर साहब आके गुरु तेग बहादुर साहब दे दरबार पुकार कीती, साडे हिंदू धर्म दी रक्षा करो। तां गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना सिर दे के हिंदू धर्म दी रक्षा कीती। और गुरु नानक साहब दे अवतार तों पहलां भी ठाकुर द्वारे ढाए जांदे रहे, भाई गुरदास जी बयान करते हैं।

चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांदना। ऐ मनुख हृदय रूपी वेड़े विच परमात्मा रूपी नाम दा जे तू चानना कर लवे, अज्ञानता रूपी हनेरा हमेशा हमेशा ले खत्म हो जाना है। जे परमात्मा रूपी नाम दा तू हृदय रूपी वेड़े विच चानना कर लवे, चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांदना। आओ आपा भी रल के इन्हां तुकानों पढ़िए कोई रसना खाली।

ही पावन पवित्र शब्द आसा महला पहला धन गुरु नानक पातशाह का उच्चारण किया। जिस शब्द अंदर सतगुरु सानू उपदेश देते हुए एक गल समझा रहे ने, कहते ने हे मनुख हे इंसान जोत वेख जात ना पुछ, क्योंकि साडा संबंध जोत नाल है जात नाल नहीं। जोत वेखांगे ते परमात्मा नाल जुड़ सकांगे, ते जे जात पुछांगे जात वाल वेखांगे जुड़ना ते किते रहे है असी टुट जावांगे, क्योंकि जात तोड़दी है जोत वेखांगे ते परमात्मा नाल जुड़ सकांगे, ते जे जात पुछांगे जात वाल वेखांगे जुड़ना ते किते रहे है असी टुट जावांगे, क्योंकि जात तोड़दी है जोत जोड़दी है। दोनों गल्लां दा ख्याल रखना। जोत पुछण करके निकटता आउंदी है, जात पुछण करके मनुख मनुख तो दूर हो जाता है। हुण यह बचन सतगुरु गुरु नानक पातशाह ने आख्या नहीं करके दिखाया, जाणो जोत ना पूछो जाती, जोत वेख पाई जात ना पूछ, क्योंकि जात ने हमेशा तोड़िया जोड़िया नहीं, ते जड़ी जोत है वो एक कर देती। हुण सतगुरु उपदेश देंदे हुए समझा रहे ने कुछ गल्लां, आप दी चोली पावां।

दे होनी है ते ना ही उथे जात होनी। गल केवल जोत दी है जात दी नहीं। पर अज समाज विच वेखो की हो रही, कोई जोत पुछ दे, कोई जोत वेख दे नहीं। पहले असी जात पुछनी, तेरी जात की, तेरी कास्ट की, किस कास्ट नू बिलोंग करना, यही केवल पुछया जांदा है। कोई जोत वाल नहीं वेखदा। पर सतगुरु कहिंदे ने पहले जोत। कई गल्लां सतगुरु जी ने ऐसियां साडी झोली पाईयां हन एक बचन बड़ा कीमती याद आया आप दी झोली पावा कि सतगुरु ने इस बचन नू आख्या नहीं आप करके दिखाया। सतगुरु आराम कर रहे सन, सतगुरु दे कन्नी एक आवाज पई। वो मिठी मधुर आवाज नू सुनदे सुनदे सतगुरु उस पासे तुर पए। की वेखदे ने एक मनुख एक पुरुष हाथ विच रबाब लई रबाब बजा रहे। उस वजदी रबाब नू वेख के सतगुरु बड़े खुश ते प्रसन्न हुए। कहंदे ने भला रबाब वजाइंदा भाई, रबाब कमाल वजा रहे। पर जे इस राग विच किते शब्द पा के वजाए इहदा आनंद कुछ होर ही होवे। उस मालक ने तेरे ते कृपा कीती है, तेनू राग दिता है, तेनू सुर दिती है, लेकिन तेरे कोल शब्द नहीं। इस राग विच शब्द नू पा के गायन करे इहदा आनंद कुछ होर हो। कौन है सतगुरु पुछ करदे ने भाई ना की तेरा? कह लगा जी ना दाना। सतगुरु कहंदे ने तेनू पता है दाना किनू कहंदे ने? नहीं महाराज मैं नहीं जानदा। दाना कहंदे ने सियाणे नू, जो सियाणा होवे उहनू दाना कह के बुलांदे ने भी इह बड़ा दाना है। दाना सियाणे नू ए कहंदे ने पर तू की कर रहे? कहंदा जी मैं लोकां दी उसत करके अपना पेट पाल रहे, रोटी गुजारे जोगा कुछ कर लेना। सतगुरु कहंदे ने मेरे नाल आ, मेरे नाल चल। जो राग विच शब्द पा के गाएगा सारियां भुखां दूर हो जाएंगी। सतगुरु जी मैं समाज दे विच एक पिछड़ी जाति विचों हां, छोटी जी जाति विच, मेरा तुहाडा मेल नहीं हो सकता। सतगुरु कहिंदे ने ओह दाने आ, मैं तेरी जोत वेख के तेरे वल आया, तेरी जात नहीं पुछ रहे तू कौन है। मैं तां केवल जोत दी पहचान कर रहे हैं, वो जोत मैनू तेरे कोल खिंच ले आई। कह लगे महाराज तुहाडा साडा मेल नहीं हो सकना। कह लगे फिर की होए, असी मेल बना लैने। सतगुरु जी ने दाने तो मरदाना कह दिता। कह लगे तू दाना नहीं तू मरदाना है। मरदाना कह लगा सतगुरु जाट ते उत्थे ही रह गई। तुहाडे विच ते मेरे विच जिहड़ी दूरी है, जिहड़ी होमे दी हंकार दी दीवार है, वह तो उत्थे दी उत्थे खड़ी है। वह दीवार केड़ी है? एक जात। साहब कहते हैं जात होमे दी दीवार है। जो मनुख दे विच खड़ी हो जाए ना वो अंदर भी जोत नूं नजर नहीं आउण दिंदी, इह दीवार इहो जिही। कहण लगे दाने तो बनाया मरदाना, लै इह भी मैं भिन्न भेद मिटा दिंदा, अड तो तू मेरा भाई होए। हुण ते तेरे मेरे विच फर्क नहीं ना रहा, तू मेरा भाई बन गए। ना रख दिता जी भाई मरदाना। गुरु नानक